मतलब आज का दिन मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा है। और एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। खबर ये है कि डाउनटाउन रैली से खबर आ रही है, शहर की पहचान बन चुकी 50 साल पुरानी हॉलीडे इन की ऐतिहासिक गोल बिल्डिंग, जिसे कभी गिराने की बात चल रही थी, उसे अब पूरी तरह से बचा लिया गया है। एंड इस आइकॉनिक बिल्डिंग को नेशनल लैंडमार्क भी घोषित कर दिया गया है। और अगले हफ्ते ये एक नए रूप में, यानी आलीशान होटल इंडिगो के नाम से दोबारा खोलने जा रही है। तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने वाली है। क्या बात है, मतलब बचाया गया, उसके बाद नए से शुरू होने वाली है। नथिंग इज़ लाइक दैट। गिराने की जब बातें कर रही थी, लोगों में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि ये होना नहीं चाहिए, और आखिरकार ये हुआ नहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंजॉय करते हैं, अगला एक गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे रेडियो नाइट्स एंड हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस यानी कैरोलिना हरिकेन्स की नई शुरुआत हो रही है। टीम के जनरल मैनेजर एरिक टुल्सकी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले सीजन में स्टेनली कप जीतने वाले सभी 23 धुरंधर खिलाड़ी इस बार भी पूरे जोश के साथ रैली में वापस लौट आए हैं और खिताब को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कम ऑन, कर दिखाना है इस बार भी। तो बॉस, शहर में सिर्फ तरक्की और जीत का ही माहौल है। जैसे कि मैं कह रहा था कि पहले से ही आज का दिन काफ़ी अच्छा है और सारी खबरें भी काफ़ी सुहावनी है। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड एंजॉय करते हैं फिलहाल अगला एक गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल।

क्या नाम सुन रहे रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स एंड अब वक्त हो चुका है मुंबई माया नगरी से बॉलीवुड की खबरें आपके सामने पेश करने का। तो पहली धमाकेदार खबर यह है कि रणबीर कपूर ने अपना 44th जन्मदिन जो है वो मनाया। इस खास मौके पर उनकी आने वाली 4,000 करोड़ की मेगा फिल्म रामायण का एक बेहद खूबसूरत बिहाइंड द सीन दैट इज BTS वीडियो रिलीज हुआ है। इसमें भगवान राम के लुक में कड़ी ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं रणबीर कपूर। वीडियो में शो के ओरिजिनल राम यानी अरुण गोविल भी रणबीर को आशीर्वाद देते नजर आए। सच में इसे देखकर फैंस का दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहेगा रेडियो नायरा पर। पका देसी पका लोकल

गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बनीवाला नाइट्स, एंड दूसरी बड़ी खबर अजय देवगन के फैंस के लिए है। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग आज से ताबड़तोब शुरू हो चुकी है। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमा घरों में धमाल मचाने आ रही है और ओपनिंग डे पर ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार है। क्या आपने आपकी टिकट बुक की नहीं तो जल्द से जल्द कर दीजिए। काजोल का भी ये कहना है और मेरा भी ये कहना है, मेरी बाजुओं में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरत है कम है। यही मैं कह रहा था कि दृश्यम 3 में क्या विजय सालगांवकर पकड़े जाएंगे इस बार और क्या होने वाला है। मतलब जिस तरह का सीरीज है दृश्यम, क्या बताऊँ मैं आपको। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, पाव भाजी खाई थी, पणजी गए थे। याद तो है ना। सुनते रहेगा रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

वेल, दृश्यम 3 के बारे में क्या ही कहूँ मैं। ये सीरीज ही इतनी लाजवाब है कि क्या होने वाला है। फैंस तो काफ़ी दिनों से, सालों से इनफैक्ट इंतज़ार कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई फिल्म द विवान बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। ठें ठें ठें ठें ठें ठें ठें ठें ठें। और महज 4 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है। मतलब क्या बात है यार। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया ने एक बयान दिया था कि बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, एंड उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चर्चाएँ जो है वो शुरू हो गई। कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? एंड शाम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है। इट्स लाइक नथिंग इज़ लाइक दैट। ये ठंडी ठंडी हवाएं, अब ये जैसे जैसे ठंडी हवाएं आ रही है, बढ़ रही है, बहुत ही अच्छी विंटर की वाइब दे रही है। नहीं, कितना परेशान कर रखा था गर्मी में, लेकिन अब वही है, ठंडी हवाएं और खुशनुमा मौसम के साथ इंजॉय करते हैं अगला एक गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का।

चोरी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा निर्वाधा नाइट्स, उर्वशी रौतेला। आपको तो पता ही है कि उर्वशी रौतेला की तरफ से उर्वशी ने अपने पिक्स और पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में एक एआई कंपनी के खिलाफ पूरे 7,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। एंड सोशल मीडिया पर कहा कि महिलाओं को नीचा दिखाने और फेक फैन वॉर शुरू करने वाली इस गलत चीज को अब रुकना ही होगा। लाइक 7,000 करोड़, यू कैन इमेजिन, का मानहानि का दावा उर्वशी ने ठोक दिया है। अभी देखते हैं क्या निर्णय आता है एंड उसके बाद क्या होने वाला है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाधा नाइट्स, बॉलीवुड की खबरें मैं आपको सुना रहा हूँ। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर एंड सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला एक गाना। रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल।

वेल एंजॉय किया आपने गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माण नाइट्स। और अगली खबर नेशनल क्रश कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए है। फिल्म चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन सीधे लंदन पहुंच चुके हैं। वहां उनकी अगली फिल्म

ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर भारत का डंका बजा दिया है। ब्लैक गाउन और सिर पर खूबसूरत क्राउन पहने जब ऐश्वर्या ने रैंप पर वॉक किया तो उनके रॉयल अंदाज ने और टशन ने पूरे दुनिया को हैरान करके रखा है। मतलब ऐश्वर्या राय इज लाइक खूबसूरती की क्वीन है, जिसे हम कहते हैं नथिंग इज लाइक दैट। इट्स लाइक उन्होंने साबित कर दिया है कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ, दैट्स इट, मेरा नाम ही काफ़ी है। मतलब क्या ही बताएं यार, 90s से किड रेड कर पाएंगे। जब मूवी आ रही थी ताल एंड उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ में जिस तरह से ऐश्वर्या ने काम किया है, नथिंग इज लाइक दैट। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्भर नाइट से, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल। अरे हाँ, कैसे हो आप, खुश तो हो ना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।

मत। थिएटर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहले का जमाना होता था कि लोग मूवी रिलीज होने की इंतज़ार करते थे एंड कुछ भी नहीं था, लेकिन अब OTT आ चुका है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मूवीज़ जो है वो मिल जाती है देखने, इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन वो दौर भी क्या दौर था। फिर बहुत सारे कुछ सालों के बाद मूवी दूरदर्शन पर आती थी, 90s की किड रिलेट कर पाएंगे एंड इंतज़ार करते थे लोग, है ना। तो अभी तो ऐसा है नहीं, मूवी रिलीज़ होने के बाद तुरंत OTT पे आ जाती है, OTT पे आने के बाद TV चैनल्स पे आ जाती है, लेकिन उस समय जो इंतज़ार में मज़ा था, वो जो एक लाइक क्या कहते हैं उसे, खुशी थी मूवी ऑन एयर आने के बाद, वो तो अलग लेवल की हुआ करती थी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल। That's right. Pump it up.

गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापन नाइट्स। हेलो हाय कसक काय, कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? एंड खुश रहना चाहिए, ना सोचना चाहिए ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में, ना फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में अच्छे से रहना चाहिए। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ हेलो हाय कसक काय। ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि कैसे हो आप सब लोग, इसका मतलब है हेलो हाय कसक काय। सो अगेन ये 7 से 10 का टाइम आप लोगों के साथ बातें करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इस शो पर। एंड किसी भी प्रकार का आप टेंशन ना लीजिए, बस अपने मेहनत से लगे रहिए जो भी काम आप कर रहे हो उस काम में। एंड डेफिनेटली सब कुछ यार बस खुश होके करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मिलता हूँ कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

निकल चली, दिल की हालत संभल चली, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

रोशनी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: मैं दगलू हुईगुंड इंटरपोल से, जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करें।
1: You like me and I like you too. Ooh, bye, poo. Fugadi, poo. You like me and I like you too. Ooh, bye, poo. Fugadi, poo. You like.

0: रॉकेट गाये फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट। अरे बारा बन मेरे जाई सबन, ये ले नाना का बॉम जाके उड़ा दे घर।
1: Oh bhai phu, phu gadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, Pakka Desi, Pakka Local.

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड।

ಸುದ್ದರಹಿ ರೇಡಿಯೋ ನಾರ 101.9 FM 99.9 FM SD4 49 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanish, a Tata product.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka desi, pakka local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9. तो जी हाँ दोस्तों, हम एक बार फिर आ गए हैं अपने आपके शो पर जिसका नाम है दिल से देसी विद वैन. वी मीट एवरी सैटरडे. लास्ट टू सैटरडे आई वाज मिसिंग बिकॉज ऑफ द गणेश उत्सव. आप लोग, बहुत लोग मुझे मिले होंगे वहाँ पे. व्हाट अ ब्यूटीफुल इवेंट वी हैड इन एडजेसेंसी, और बापा की सेवा करने का मौका मिला एंड वी हैड सो मच फन गोइंग ऑन. तो आज का शो पूरा फुल पैक्ड है. देर इज अ लॉट ऑफ यू नो, आज का टॉपिक भी थोड़ा जोरदार है, मसालेदार है, प्रीटी लाइट टॉपिक एंड लिटिल बिट फन गोइंग राइट. इट्स एन ईजी मूड, इट्स एन अ फॉल इज हियर. आज एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है गांधी जयंती के ऊपर मॉरिसविल में, जो बापू की यू नो यादगार में मनाया जाता है. एंड आई विल स्टार्ट द शो विद अ लॉट ऑफ गुड अनाउंसमेंट्स. तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बात करनी है. पहले तो देयर इज अ बिग यू नो ऑस्पिशियस आई वुड से एक चीज होने जा रही है, जो राधा कृष्ण टेम्पल का भूमि पूजन होने जा रहा है, विच इज हैपनिंग टुमारो 10:30 AM ऑनवर्ड्स 23 राधिका वे पर. प्लीज इस मौके का जरूर हिस्सा बनिए. द टेम्पल नीड्स हेल्प एंड अगेन द गुरु जी इज ऑल्सो हियर. सो इट्स अ रियली गुड प्रोग्राम गोना बी हैपनिंग फ्रॉम टुमारो. जो भूमि पूजन होने जा रही है वहाँ पे एक बहुत ही भव्य विशाल मंदिर बनने जा रहा है. और आज एक यूथ लीडरशिप वर्कशॉप हो रही है. सो इफ यू हैव यूथ एट होम, किड्स एट होम, डू पार्टिसिपेट, डू ज्वाइन देयर. ये चैटम स्टेशन पे हो रहा है, 1110 North Walker Street, Kheripur, 9 AM to 7:30 PM, where there's a lot of things happening there. Jarur isko join kijiye. Or next week, the temple is also, Radha Krishna Temple is also organizing the gala dinner event on 9th of October. Please, saath dijiye is temple ka, they need a lot of help. यू नो बहुत ही अच्छी चीज़ होने जा रही है, सो वी शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इट. उसी के साथ में आई विल ऐड कि भाई नवरात्रि शुरू हो रही है, तो डांडिया गरबा, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑल अक्रॉस द बोर्ड. तो पहले तो देयर आर टू बिग इवेंट्स हैपनिंग हियर. वन हैपन्स ऑन HSNC विच स्टार्ट्स फ्रॉम अपकमिंग फ्राइडे, जहाँ पे रोज 8 बजे से 9th to the 19th of October, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई एम लुकिंग एट ऑल माई फ्लायर्स बिकॉज इतना कुछ आते रहता है. And I love to, you know, keep the community informed on these things. So, October 3rd, which is today, 5:30 to 7:30, there is a Garba workshop happening. And then there's also Navratri starting at the temple from 9 to the 19th, 8 p.m. onwards. And then RTP Entertainment is bringing a big show for Navratri that is happening on 9th and the 10th and 16th and the 17th. These are happening on both weekends at Net Sports. तो वहाँ पे जगह भी बहुत है, और यू नो देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ यू नो लाइव बैंड आर्टिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट. तो नवरात्रि इज कमिंग इन फुल स्विंग. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अप इन द एरिया. टुडे देयर इज अ टूटा दिवाली हैपनिंग इन हॉली स्प्रिंग्स. इट्स अ वेरी लार्ज प्रोग्राम. जॉइन, गो अहेड. यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अप इन द एरिया. एंड देन यस्टरडे वी हैड अनुपम खेरजी हियर. ब्यूटिफुल शो. सॉरी आई कुडंट अटेंड, बट यू नो आई हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इट. मार्क द डेट ऑल्सो फॉर दशहरा की सेलिब्रेशन का, जो 24th अक्टूबर को होने जा रहा है, जहाँ पे बहुत ही बड़ा रावण दहन होता है. एंड देन ऑल्सो मार्क द डेट फॉर नवंबर 14th, विच इज़ गोना बी अ महायज्ञ हैपनिंग विद अन्नकूट फेस्टिवल. ये यज्ञ जो है वो न्यू कैंपस डेवलपमेंट के लिए है, एंड दिस इज़ गोना बी समथिंग डिफरेंट एंड स्पेशल. तो यहाँ पर साइट रिवील होगी, जहाँ पे मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पे साइट होगी. द एंटायर कम्युनिटी इज़ गोना पार्टिसिपेट इन दिस यज्ञ फॉर दिस गुड ऑस्पिशियस इवेंट. यू कैन ऑल्सो गो इन द टेम्पल वेबसाइट एंड रजिस्टर. एंड देर आर सो मेनी प्रोग्राम्स. आई एम प्रीटी मच प्लानिंग टू डू अ होल सीरीज ऑफ शो ऑन दीज इवेंट्स विच आर कमिंग अप, स्पेशली व्हेन द नवरात्रि इज कमिंग एंड देर इज सो मच हैपनिंग. तो थोड़े गाने वाने सुनिए, आज की प्लेलिस्ट भी थोड़ी जोरदार है. देन आई विल रिवील द टॉपिक आफ्टर द ब्रेक. बट दीज वर सम कपल अनाउंसमेंट्स आई वॉन्ट टू मेक स्पेशली फॉर ऑल द प्रोग्राम्स हैपनिंग अप इन द एरिया. तो मिलते हैं एक छोटे से गाने के ब्रेक के बाद.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी बतवैन। यू कैन ऑल्सो लिसन इन ऑन 99.9 FM HD4, 101.9 FM या 1490 AM पर। एंड द लाइन्स आर ऑल्सो ओपन। यू कैन ऑल्सो कॉल मी एट 919-999-8595 अगर आप कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड आई हैव नोटिस दिस पैटर्न। और ये बहुत कॉमन है हम लोगों के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में बात की जाए। पहले तो यू नो आई वॉन्ट रिवील द टैग लाइन ऑफ दिस, राइट? सो आप सुन रहे हैं शो दिल से देसी विद बहन। वी मीट एवरी सैटरडे फॉर 2 आवर्स। हमारे पास पूरे 2 घंटे पड़े हैं और 15 मिनट निकल भी चुके हैं। आज की प्लेलिस्ट भी थोड़ी जोरदार है, तो गाने भी थोड़े अच्छे होंगे, थोड़ा लाइट मूड, मस्ती करेंगे। पर आज थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ये थोड़ा पर्सनल है, राइट? और यू नो हम सभी इससे गुजरते हैं, तो थोड़ा एम्बेरसिंग भी है, थोड़ा चुलबुला भी है, थोड़ा मसालेदार भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन चीज़ों पर जो हम सब करते हैं पर फिर भी हम सीधा मुंह पे डिनाई कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि कुछ ना कुछ लेके आया ये, बट नहीं ना, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड देन लोग कहेंगे कि यू नो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचेंगे, बट सच में कई चीज़ों में फ़र्क पड़ता है हमें, राइट? और आज हम वो चीज़ें देखेंगे जिनमें हमें क्यों फ़र्क पड़ता है, कैसे फ़र्क पड़ता है, और हम अननोइंगली अनकॉग्निटिवली हम इन चीज़ों में ट्रैप्ड रहते हैं। तो विल टॉक अबाउट दिस। तो इमेजिन कीजिए, राइट, आप घर से निकले, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, राइट? बट स्टिल पहले 3 बार यू नो शर्ट बदली, एक मिरर में देखा, देन फिर दूसरी शर्ट पहनी, फिर वापस एक शर्ट पहनी, फिर बाद में जाके वो पहली वाली शर्ट पहन के निकल गए और यू नो पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। जाना कहाँ था? पटेल ब्रदर्स में या कोई ग्रोसरी स्टोर में। फ़र्क नहीं पड़ता क्या पहना है क्या नहीं, बट स्टिल भी फ़र्क तो पड़ता है, राइट? So unknowingly we get into these things. लोग कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, बस बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं, बट फिर बेटे ने 97 मार्क्स लेके आए और आप बोले वाह बेटा क्या यू नो बढ़िया काम किया है, और ठीक एक सेकंड पे अच्छा यू नो वो तेरे जो कलीग है उसके कितने मार्क्स आए, राइट? सो फ़र्क नहीं पड़ता हमें, पर फिर भी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ कंपेरिजन, राइट? वी कंपेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आर लाइफ विद अदर्स, विच काइंड ऑफ पुट्स यू इनटू अ स्पॉट वेयर यू फील लाइक यू नीड वैलिडेशन फॉर थिंग्स। इसी के बारे में बात करेंगे। तो लोग कहते हैं कि लाइक यू नो सोशल मीडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, पर फिर भी वो दिवाली की जो फ़ोटो डाली होती है उसको हम 14 बार रिफ्रेश करके देखते हैं, क्योंकि यू नो एक आपके फ्रेंड ने सब फ़ोटो डाली मगर आपकी फ़ोटो मिस हो गई उसके अंदर, राइट? फॉर सम रीज़न, और आप बोलते हैं कि लाइक यू नो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी यू कीप लुकिंग एट दैट फोटोज एंड सी हाउ मेनी लाइक्स यू गॉट ऑन ऑल द अदर फोटोज़। तो ये चीज़ों में सबको फ़र्क पड़ता है, बट यू नो वी आर अनकॉग्निटिवली थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, लुकिंग फॉर यू नो वैलिडेशन ऑल अक्रॉस द प्लेस। और मेरा सबसे फेवरेट, हमें यू नो बड़ा घर चाहिए। पहले तो कहेंगे कि हम यार सिंपल सा घर होना चाहिए या यू नो इतना तामझाम नहीं चाहिए, बट जैसे ही घर लेने जाएंगे, हाउस होल्ड हंटिंग करेंगे, तो पहला ही क्वेश्चन आता है 5th बेडरूम कहाँ है, थिएटर कहाँ है, 3-car garage विद पूल कहाँ है, एंड देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर होम्स विद अदर पीपल, राइट? तो अगेन फिर सेम फैक्टर आ जाता है कंपैरिजन का, राइट? तो आज हम थोड़ी सी यू नो इसी बारे में बात करेंगे। चाय शाय गर्म कीजिए, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, या तो कॉफ़ी पीजिए, लाइक वट एवर यू वॉन्ट ड्रिंक, बट विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? कोई जजमेंट नहीं, कोई लेक्चर नहीं करेंगे हम, और हम इसी के बारे में बात करेंगे आज के, हम कैसे अनकॉग्निटिवली और बिना कुछ इतना सोचे समझे वी आर स्टिल इन द कंपेरिजन वर्ल्ड। बस एक मिरर है, क्योंकि यू नो सबसे फनी चीज़ है कि भाई यू नो इतनी चीज़ें हम यू नो बोलते हैं और करते कुछ और हैं और होती कुछ और है। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही फाइन लाइन है जिसके ऊपर एक पूरी यू नो फनी बॉलीवुड मूवी बन सकती है। तो वी आर गोना टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स द टॉपिक ऑफ द शो, बट फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। और मैंने देखा है कि वी टॉक अबाउट कंपेरिजन्स के भाई बच्चों के स्कूल ग्रेड्स हो, बच्चे हो या पेरेंट्स हो या अपनी लाइफस्टाइल हो या सोशल मीडिया हो, व्हाटएवर दैट इज, वी जस्ट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क हर जगह पे पड़ता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं पे कंपेरिजन की दुनिया में फंसे हुए हैं। चलिए गाने वाने सुनिए, विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस टॉपिक को हम छेड़ेंगे आज के शो में, और फिर वी विल बी बैक आफ्टर कपल सॉन्ग्स। आज के थोड़े गाने भी अच्छे हैं, तो यू नो एंजॉय द सॉन्ग्स एंड विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक।

क्या बात है, आज तो प्लेलिस्ट इज प्रीटी गुड। आई होप आई विश, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अनम्यूट बटन दबाया था कि नहीं इसके पहले, बट स्टिल आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन 99.9 FM HD 4 101.9 FM या 1419 AM। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं 919-999-8595। वर टॉकिंग अबाउट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आज का ये टॉपिक है, तो थोड़ा सा यू नो आई टेक यू बैक कि भाई हम बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं अंदर ही अंदर अनकॉग

करते अंदर ही अंदर हम इसके बारे में सोचते हैं और कंपेयर करते रहते हैं। एक छोटी सी चीज़ यार, कपड़ा ले, कपड़ा कहीं बाहर जाना है ग्रोसरी स्टोर में भी, तो उसमें भी हम चार बार शर्ट चेंज करके देखते हैं कि यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, पर बाहर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, ऐसे यहाँ पे कौन देखता है, राइट? दैट्स द टैग लाइन भी है। तो सबसे पहली चर्चा जो है इस टॉपिक के ऊपर वो है कि लोग क्या कहेंगे, राइट? शुरू करते हैं, लाइक यू नो, शायद ये इंडियन सोसाइटी का सबसे पावरफुल चार शब्द है मेरे हिसाब से, तो लोग क्या कहेंगे, राइट? ये जो तीन शब्द है या चार शब्द हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही, इंडियन सिविलाइजेशन इस सेंटेंस के ऊपर यू नो सेटल्ड है कि भाई लोग क्या कहेंगे, कि ये टेंशन एक हमेशा दिमाग में चलती रहती है। चाहे कि हम यू नो सात समुंदर दूर है, यहाँ पे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो व्हाट यू हैव व्हाट यू डोंट, आई मिलियनर है बिलियनर है, या यू नो यू आर हैविंग ए हैप्पी लाइफ विथ योर ओन सेल्फ, बट स्टिल वी आर इन दिस, वो जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हमारे दिमाग में वो चलती रहती है कि भाई लोग क्या कहेंगे, मेरा स्टेटस क्या है कम्युनिटी के अंदर, राइट? दैट फोक्स एवरीबॉडी इनडायरेक्टली समवेयर और दिया गया था, राइट? तो छोटी छोटी चीज़ें देखिए, लाइक नवी कार ली, लोग क्या कहेंगे, नई कार नहीं ली, पुरानी कार है तो लोग क्या कहेंगे, एक एक बच्चा है आपका तो लोग क्या कहेंगे, दो है तो अरे दो बच्चे हैं आपके, ओ चलो बढ़िया है, तीन हो गए तो अरे बस करो अब, यू नो ये लोग क्या कहेंगे, घर रेनोवेट करवाया, अरे इतना खर्चा क्यों करवा दिया, लोग क्या कहेंगे, घर रेनोवेट नहीं करवाया, अरे तुम्हारा घर तो बहुत पुराना लग रहा है, यू नो इतना पैसा क्यों उड़ा दिया, अगर आपने इंडियन एंगल से देखेंगे तो रेनोवेट करने में वो कहेंगे, यू नो इतने साल हो गए, एक बाहर इंडिया जाओ, आप इंडिया नहीं गए इतने टाइम से, और अगर आप चाहते हैं तो बोलेंगे अरे यार ये तो हर साल इंडिया में जाते हैं, राइट? सो ट्रेडिशनल कपड़े पहन लिए तो बहुत इंडियन लग रहे हो, वेस्टर्न कपड़े पहन लिए तो बहुत अमेरिकन हो गए हो। भाई एक चीज़ बताओ कि भाई आप इससे जीत सकते हैं या नहीं? मेरे हिसाब से तो आप लिटरली इससे नहीं जीत सकते, इन कॉन्वर्सेशन से और इन कंपैरिजन से और इन यू नो बैक एंड फोर्थ राइट एंड लेफ्ट की स्विंग में आप यू नो पेंडुलम की तरह घूमते रहेंगे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस एवरीबॉडी एंड टू एक्सप्लेन एवरीबॉडी, एंड आई लिव इन दिस बिकॉज यू नो आई एम इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं ये सोचता रहूँ कि लोग क्या कहेंगे और यू नो किस किस को मैं जवाब दूँ। It's better that you let it go. जिनको पता है they will figure out, जिनकी टेंशन है they'll figure it out, right? doesn't matter to me. और फिर you know कहीं ना कहीं deep down हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे सिर्फ strangers के बारे में नहीं है, ये belonging के बारे में है कि भाई हम accepted अपने आप को feel कराना चाहते हैं कि you should be accepted in front of others. हम चाहते हैं कि हमारी family की respect हो, बच्चे successful हो, parents proud हो, all that is good, but at somewhere deep down what we're looking for is the acceptance from the others. तो शायद सवाल ये नहीं है कि हमें फ़र्क यू नो क्यों पड़ता है, सवाल ये है कि ओपिनियन को, किसी के ओपिनियन को हमारे टेबल पे सीट मिलनी चाहिए कि नहीं, राइट? किस के ओपिनियन को हमारे टेबल पे सीट मिलनी चाहिए और किसके नहीं, राइट? बिकॉज इफ़ यू आर ट्राइंग टू यू नो give everybody's opinion an importance, then you know it becomes difficult for you to justify everything and everybody, right? तो यही एक problem है, क्योंकि पूरे मोहल्ले के अगर आप opinion को, पूरे समाज के opinion को अगर आप VIP pass देने लगे तो problem आपकी है और आप इसमें फंस जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर दोबारा गाने वाने सुनिए। ये एक एक, एक एक पहलू है कि हमें फ़र्क पड़ता है या नहीं इन चीज़ों का। चाय चाय गर्म कीजिए, थोड़ा यू नो मौसम को एंजॉय करिए। वापस आने पर हम यू नो सबसे बड़ी झूठ की हर देसी घर में जो होती है उसका खुलासा करेंगे कि भाई हम बिल्कुल कंपेरेटिव नहीं हैं, बट लेट्स लुक एट हाउ कंपेरेटिव वी आर और उसके अंदर कितना कंपेरिजन चलता है। तो गाने वाने सुनिए, दिल बी राइट आफ्टर द ब्रेक।

क्या बात है, कैलाश खेर ऑल टाइम बेस्ट। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM और यू कैन ट्यून इन ऑन 101.9 FM या 1490 AM पर। यू कैन ऑल्सो कॉल मी एट 919-999-8595। हमारे शो का नाम है दिल से देसी विद वैन। हम मिलते हर शनिवार और आज हम बात कर रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता टॉपिक पर, राइट, और आई डोंट कंपेयर वाला। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि लाइक यू नो लेट्स लुक एट डिफरेंट एंगल्स के भाई हमको कैसे फ़र्क पड़ता है और हम बोलते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक कहते हैं ना कि हम कंपेरेटिव नहीं है बच्चों से, हम वो बोलते हैं ऑलवेज, राइट। बट आई हैव सीन इट पर्सनली लॉट ऑफ प्लेसेस। हर देसी पेरेंट्स में अपने बच्चों में किसी के किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, वो कहते हैं ठीक है चलिए थोड़ा एविडेंस भी देखते हैं, राइट। तो सिनेरियो है, राइट, कि बेटा एक 97 मार्क्स लाएगा, वाह शाबाश, यू नो, फिर 7-8 सेकंड के बाद एक क्वेश्चन आएगा, पूरे क्लास का रिजल्ट कैसा था, तो वहीं पे यू आर स्टार्टिंग कंपेयरिंग, राइट। और फिर एक यू नो एक बच्चा होगा, उससे आप बोलेंगे वो रोहन कितना लेके आया, एंड देन अगर रोहन 96 लाया 97 के अगेंस्ट में, तो चलो सेलिब्रेशन पार्टी, हलवा बनेगा, यू नो रेस्टोरेंट में डिनर फर्स्ट क्लास। ये अगर रोहन गलती से 98 ले आया तो उसी रात को घर में इमरजेंसी मीटिंग हो जाएगी, फैमिली यू नो डिनर टेबल पे ट्यूशन लग जाएगी बेचारे की, व्हाट्सएप ग्रुप पे शुरू हो जाएगा कि भाई IXL का कोर्स कहाँ पे मिलेगा, कोचिंग सेंटर कहाँ पे ढूंढना है। ये होता है, राइट, आई हैव सीन इट, एंड आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं पे। तो ये सिर्फ एक पढ़ाई से सीमित नहीं है, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, कॉलेज में, जॉब में, घर में, कार में, वेकेशन में, हर जगह पे यही चल रहा है, कहीं ना कहीं पे तो चल रहा है, राइट। और सभी में होता है कि भाई यू नो मेरी बेटी पियानो सीख रही है, अच्छा नाइस, मेरा बेटा भी पियानो सीख रहा है, ओ वैसे मेरा बेटा टेबल टेनिस भी खेलता है या टेनिस भी खेलता है, ओ तो मेरा बेटा कोडिंग भी कर रहा है। इस पॉइंट पे आपको यू नो रियलाइज़ होता है कि ये कन्वर्सेशन नहीं है, ये एक देसी घर में यू नो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गई है, राइट। बिकॉज यू आर स्टार्टिंग टू कंपेयर योर किड एंड यू ट्राइंग टू ड्रैगिंग मी टू सो मेनी प्लेस दैट ही डजंट इवन वॉन्ट टू गो, बट यू आर पुशिंग हिम अराउंड दैट, राइट। तो लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई कॉम्पिटिशन गलत नहीं है, राइट, दैट मोटिवेट कर सकता है, पुश कर सकता है, न्यू स्किल्स सिखा सकता है, लेकिन कंपैरिजन एक अलग चीज़ है, राइट। जिस दिन आपकी खुशी दूसरों के बच्चों को लाइक मार्क्स में अगर कंपैरिजन में आ जाए, या यू नो वो कितना सेकंड द कंपैरेटिव चाइल्ड इज़ डूइंग समथिंग अगेंस्ट योर चाइल्ड, उस टाइम पे आपने अपने बच्चे की और अपनी खुद की हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया, ये समझ लीजिए आप, राइट। तो सर्वेस में लाइक इंडियन पेरेंट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, राइट, माने जाते हैं, लेकिन इन्वॉल्व्ड और ऑब्सेस्ड के बीच में एक थोड़ी सी ब्लरी लाइन है, राइट, दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, बिकॉज यू नो नाउ स्लोली स्लोली स्लोली यू आर स्टार्टिंग टू कंपेयर एवरीथिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट समथिंग। तो कंपेरेटिवनेस इज गुड, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो बिकमिंग ऑब्सेस्ड अबाउट योर चाइल्ड दैट यू वॉन्ट टू बी द नंबर वन अगेन, यू नो दैट डजेंट हेल्प द चाइल्ड और नीदर योर मेंटल हेल्थ एट सम पॉइंट, राइट। एक एवरेज देसी पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में लाइक यू नो ये आपने हमेशा देखा होगा, एग्जाम रिजल्ट्स आ जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन हो गया, शादी की फोटो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन का ट्रैफिक सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, बिकॉज दिस इज वेयर वी रिवॉल्व इन लाइक सम ऑफ द यू नो कहते हैं कि यू नो सक्सेसफुल पैरामीटर अपने हम इन चीज़ों से गिनते हैं, बेटा इंजीनियर बन गया, ये सेंटेंस आपको हर देसी पार्टी में मिलेगा, चाहे कि टॉपिक कुछ भी चल रहा हो मगर ये बोलना जरूरी है कि भाई यू नो मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग, बट देन अगेन यू आर ट्राइंग टू फ्लॉन्ट एंड यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ और यू आर ट्राइंग टू यू नो compare yourself, your lifestyle with somebody else. Again, this is just an old way of doing things, but इसी तरीके से हम बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता मगर हमें फ़र्क बहुत कुछ पड़ता है इन चीज़ों से, बिकॉज यू आर कॉग्निटिवली ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो चलिए गाने वाने सुनिए, देन विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक।

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन ऑन रेडियो नायरा, एंड यू कैन ट्यून इन ऑन 99.9 FM HD4 या 101.9 FM या तो फिर 1490 AM, और यू कैन ऑल्सो कॉल मी एट 919-999-8595। तो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। तो चलिए हम बात करते हैं कि कंपेरिजन की, राइट? तो पेरेंटिंग कॉम्पिटिशन जो कोई मानता नहीं, राइट? एंड आई हैव सीन इट अ लॉट। तो अब थोड़ी सीधी बात करते हैं कि कभी कभी हम बच्चों के साथ कम्पीट नहीं करते, हम उनके कैलेंडर के थ्रू कम्पीट करते हैं उनके साथ में। तो वो आपकी बात सुनते नहीं, मगर यू नो देन यू ट्राई टू कंट्रोल देयर कैलेंडर। तो सिंपल, आई हैव सीन इट, और आपने भी देखा होगा कि मेरी बेटी मंडे को सॉकर पे जाती है, ट्यूसडे को पियानो में, यू नो वेंसडे को भरतनाट्यम, एंड थर्सडे को ट्यूटरिंग, फ्राइडे को रोबोटिक्स, सैटरडे को कोडिंग, संडे को ऑब्वियसली मंदिर में कोई ना कोई क्लास होगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्लास होगी लैंग्वेज की सीखने की या कुछ भी ऐसे, राइट? तो फिर मंडे सुबह वो बच्चा बेचारा उठेगा, आधी आँख खुली है आधी नहीं है, स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट पे यू नो सो रहा होगा बेचारा वो, यू नो, एंड देन यू इमिडिएटली स्टार्ट सेइंग कि भाई यू नो फ़ोन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बट भाई स्केड्यूल किसने बनाया? वो आपने बनाया, राइट? और आप ही ने सभी कुछ ये शुरू किया और उसको बेचारे को फंसा दिया, राइट? तो कंपटीशन अगेन, दैट्स वेयर ऑल ऑफ दिस बिगिंस। के अब असली सवाल ये है कि क्या हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, या 12 साल की एज में या यू नो व्हाटएवर एज दे आर, हम उनका परफेक्ट रेज्यूमे रेडी कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स बच्चों से कम्पीट नहीं करते, वो बच्चों की इमेज से कम्पीट कर रहे होते हैं। तो समथिंग टू थिंक अबाउट, राइट? कि भाई इतना कुछ उसके ऊपर लाद दिया है कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, we can have, which is good, but again it's kind of a forced activity which will never pay off in a long term. It was just to satisfy yourself and you know you to shine out, but using a child to be able to do all of this, and you know of course your intention is good to give them the best, but बेचारे को यू नो घसीट दिया है इस कंपैरिजन के अंदर में, राइट? तो सोचिए जरा इसके बारे में, देन विल कीप टॉकिंग अबाउट न्यू स्टफ। तो आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो हम घुसेंगे सबसे डेंजरस टेरिटरी में, जिसका नाम है सोशल मीडिया। तो गाने वाने सुनिए, देन वी लाइव राइट बैक।

0: GMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा शो दिल से देसी विद मैन, और ऑलमोस्ट एक घंटे पूरे हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन कल्चर की, और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक जो टैगलाइन है राइट, और यू नो वी आर हैप्पी व्हाट वी आर डूइंग, बट वी आर आल्सो समवेयर इंटरनली थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे राइट, और इन चीज़ों में हम झगड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं पर ना चाहते हुए भी हम इन चीज़ों पर सोचते रहते हैं. तो अब ये एक डेंजरस टेरिटरी में हम घुस रहे हैं जो है सोशल मीडिया. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर राइट, बट ये सब के लिए राइट कि मुझे सोशल मीडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये थोड़ा सा टेस्ट कीजिए. एंड आई थिंक आई हैव सीन मोस्ट बहुत से लोग इन चीज़ों के अंदर फंसे होंगे राइट. तो एक फ़ोटो आपने पोस्ट कर दी, एक मिनट में 23 लाइक, फील गुड, 5 मिनट में 47 लाइक्स, एक्सेलेंट, 20 मिनट में 120 लाइक्स राइट. आप खुद को यू नो थोड़े टाइम में तो ऐसा लगता है यार लोकल सेलिब्रिटी हो गए हैं राइट, कि भाई इतने लाइक्स आ रहे हैं राइट. पर नोटिस करते हैं कि आप देख रहे होंगे कि अरे यार लाइक्स के बीच में जिससे एक्सपेक्ट कर रहा था उसने लाइक किया कि नहीं राइट. तो अगर नहीं हुआ तो फिर भाई फेडरल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है दिमाग के अंदर कि भाई ये क्या हो गया, लाइक कैसे नहीं आया उस बंदे से राइट. और आप सोचते होंगे कि उन्होंने देखा नहीं होगा, शायद इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते होंगे, वेट उन्होंने यू नो कल ही तो वो प्रिया की फ़ोटो को लाइक किया तो मेरे पे क्यों नहीं लाइक किया. लेकिन असली बात यह है कि सोशल मीडिया लाइक्स के बारे में लाइक्स की बात नहीं है, ये वैलिडेशन के बारे में है राइट, कि यू वॉन्ट वैलिडेशन फ्रॉम पीपल ऑन सोशल मीडिया समटाइम्स. एंड आई मीन यू मीन्स लाइक इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, और ये लाइक की जो पूरी एक यू नो गेम है ये फेसबुक और ये यू नो बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, देर इज समथिंग अ बिग साइंस बिहाइंड इट राइट, कि भाई उन्होंने लाइक का बटन रखा है, डिसलाइक का हटा दिया. सोचिए क्यों हटाया था राइट, पहले तो दोनों होते थे राइट. तो हम सीन फील करना चाहते हैं, हम इंक्लूडेड फील करना चाहते हैं, और कभी कभी हम बिहाइंड द सीन्स जिंदगी को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करना शुरू करने शुरू हो जाते हैं राइट, कि भाई उसने डाला तो मुझे भी डालना है राइट. आप किसी के वैकेशन की फ़ोटो देखे एयरपोर्ट वाली, यू नो लड़ाई नहीं देखे, एंड परफेक्ट फैमिली की फ़ोटो नहीं फ़ोटो देखते हैं, और यू नो उसके पहले एक 37 फेल्ड अटेम्प्ट्स नहीं देखते हैं राइट. अगर ब्यूटीफुल घर दिख जाता है, मॉर्गेज नहीं दिखती, प्रमोशन दिख जाती है, पर उसके पीछे सालों की मेहनत नहीं दिखती राइट, कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं. When you get into that level of likes and dislikes, आने शुरू होते हैं, तो उसके पीछे किसी इंसान ने बहुत मेहनत की होती है, उसने कुछ तो किया होगा जिसके लिए लोग उसे लाइक किया, इतने सब कर रहे हैं राइट. तो वी फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट, वी आर जस्ट यू नो वी आर जस्ट लुकिंग इन टू दिस कंपेरिजन थिंग, कि भाई did I got validation about this thing or not. तो इसलिए social media is also very wonderful, very nice, very you know बहुत ही बढ़िया चीज़ है right, to send your message across, but it can also be exhausting to your mind. दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका अगर आप like और dislike के चक्कर में फंस गए. It's a never ending circle, और फिर आपको होगा दोबारा एक फोटो डाल के देखता हूँ क्या आता है right. तो you're constantly looking for validation from people, मगर दिमाग में ये होता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, but somewhere in your mind you keep looking into these things. तो गाने वाने सुनिए, एक घंटा पूरा हो चुका है, विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, और बाद में हम लेके आएंगे नेक्स्ट वन, विल टॉक अबाउट लाइक यू नो व्हाट्सएप पे आया राइट, वो उसका कन्फेशन शुरू करेंगे. तो चलिए

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन जैस्मिन सैंडलर। दिस इज माय सन्स फेवरेट सॉन्ग। बहुत नाचा है वो इस गाने के ऊपर। तो चलिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन कल्चर, राइट? एक कन्फेशन का कल्चर, राइट? तो आपने कहीं पे पूछा होगा, देखा होगा, सोचा होगा, इसको फील भी किया होगा इन चीज़ों को। अगर आप कोई ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, यहाँ वहाँ इन चीज़ों को पूछेंगे तो, राइट, यू नो, मैंने देखा है और मैंने ये पर्सनली सुना है कि लाइक यू नो ये कन्फेशंस के भाई, यू नो, ये पार्टी में इनवाइट नहीं है आया तो हम कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, बट राइट, यू नो, अगर एक दिन इवेंट के पहले भी नहीं आया तो सारी रात नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं कि यार मुझे इनवाइट नहीं किया, राइट? ये आर सम कन्फेशंस कि भाई आपको फ़र्क पड़ता है मगर आप बोल रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कि भाई कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम हमेशा बोलते हैं, राइट, मगर आपके नेबर ने अगर कोई तगड़ी सी गाड़ी ले ली तो पहले ही नेक्स्ट वीक पे हम शुरू करते हैं कि भाई नवी कार का बजट बनाओ। फ़र्क पड़ता है, राइट, मगर हम कहते हैं कि नहीं पड़ता। कई लोगों से आपने सोचा होगा कि यार, यू नो, आजकल के ज़माने में प्रमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो, जॉब जॉब है, लेकिन जब आपके कॉलीग या किसी को, यू नो, प्रमोशन मिल जाए तो फटाफट हम लिंक्डइन उस बंदे का पूरा CID लगा देते हैं ढूंढने में। एंड आई हैव सीन दैट पर्सनली हैपनिंग टू माय लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल, लाइक रैंडम फोक्स आई डोंट इवन नो देयर लुकिंग एट द लिंक्डइन प्रोफाइल्स, राइट, जस्ट सून एज यू पोस्ट समथिंग अबाउट प्रमोशन और समथिंग। तो ये चीज़ें हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं, एंड यू नो नथिंग रॉन्ग, यू ट्राइंग टू बी कंपेरेटिव, बट अगेन हम बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ता मगर हमें फ़र्क पड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो गाने सुनिए, देन विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक।

क्या बात है, आप सुन रहे थे मिका और उसके पहले बपीरा। तो आज तो गाने सब जोरदार बज रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो। आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन ऑन रेडियो नायरा 99.9 FM HD4, 101.9 FM या 1490 AM पर। तो आज हम बात कर रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि राइट, तो कंपेरिजन कल्चर। चलिए, हमें बड़ा घर नहीं चाहिए की बात करते हैं, राइट। तो ये आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि हर देसी फैमिली में जब हाउस हंटिंग शुरू होती है, हम कुछ सिंपल चाहिए, कुछ भी बड़ा नहीं चाहिए। फिर रिक्वायरमेंट शुरू होती है जब आप देखने शुरू करते हैं, तो 4 बेडरूम मिनिमम 5 तो चाहिए, ऑफिस रूम होना चाहिए, गेस्ट रूम होना चाहिए, फिनिश बेसमेंट होना चाहिए, 3 कार गैराज, चलो अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट, बैकयार्ड भी चाहिए, ओपन किचन चाहिए, नेचुरल लाइट चाहिए, और एक थिएटर रूम भी होगा तो बढ़िया है, राइट। बट यू नो, ये पूरी आखिर यू नो, मैं कोई कहेगा कि हमें तो यार यू नो बहुत ही सिंपल चाहिए, बाद में जब बिल आता है तो हमें इतना कुछ महंगा नहीं चाहिए, बस बिल्कुल सादा सा घर हो, एंड दैट्स ऑल वी वांट। बट लेकिन इसमें एक डीपर बात है, राइट, कि कई इमिग्रेंट फैमिली में जो घर सिर्फ घर नहीं होता, वो एक यू नो स्टेटस सिंबल है हमारे लिए, और हम ये हमने इसे बना लिया है, राइट। इट इज़ नॉट समथिंग बिग, इज जस्ट अ हाउस एट द एंड ऑफ द डे, बट हमने इसे इतनी बड़ी चीज़ बना ली है कि भाई जितना बड़ा घर उतना बड़ा स्टेटस सिंबल होता है। तो हमारे पेरेंट्स ने शायद जो बहुत कम से शुरू किया था, यू नो, वो एक अच्छा घर बनाते थे सिक्योरिटी के लिए, सक्सेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता था बैक इन द डेज। पर इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट, आई मीन एवरीबडी शुड हैव द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड। लेकिन कभी कभी हम खुद से अगर पूछे तो, राइट, कि हम वो घर ले रहे हैं जो हमें चाहिए, या वो घर जो दूसरों को अच्छा दिखना चाहिए हम वो ढूंढ रहे हैं, राइट। वहीं से असली कन्वर्सेशन शुरू होती है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। हमें फ़र्क पड़ता है, बट यू वॉन्ट टू ड्रॉ दैट लाइन समवेयर इन योर माइंड के यू आर बाइंग समथिंग व्हिच यू वॉन्ट, और यू आर जस्ट बाइंग समथिंग जस्ट फॉर द शो ऑफ पर्पसेस। तो सोचते रहिए इस बारे में और गाने सुनते रहिए, देन विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक। और इसके बाद में हम आप बात करेंगे शो ऑफ नहीं करता, राइट, तो ये भी होता है कहीं ना कहीं पर। चलिए गाने सुनिए, देन विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक।

क्या बात है, सोना नहीं चांदी नहीं प्यार तो मिला, यार तो मिला प्यार के लिए। सही टाइम पे गाना बजाया क्योंकि हम बात कर रहे हैं शो ऑफ की और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हम बोलते हैं कि हम शो ऑफ नहीं कर रहे, राइट। ये यूनिवर्सल है, राइट, क्योंकि इससे कोई मानने कोई तैयार नहीं होता कि हम शो ऑफ नहीं कर रहे। तो चलिए हम उसे नवा नाम दे देते हैं, और वो एक्चुअली होता भी है आजकल कि भाई जस्ट शेयरिंग, राइट, उससे चेंज कर दिया जाता है कि करना शो ऑफ होता है, मगर साथ में टैगलाइन लगा देते हैं कि जस्ट शेयरिंग दिस फॉर एवरीबॉडी, राइट, नवी कार बस शेयर कर रहा हूँ, राइट, नवा घर, जस्ट शेयरिंग यूरोप की वेकेशन, जस्ट शेयरिंग बेटा कॉलेज में गया, जस्ट शेयरिंग नवा किचन रेनोवेशन, जस्ट शेयरिंग फॉर एवरीबॉडी, राइट। फिर कैप्शन में आता है फीलिंग ब्लेस्ड, राइट, आई मीन अगेन यू नो कहीं ना कहीं पे तो दिमाग में होता है कि लाइक यू नो लेट्स शो ऑफ।

राइट, कभी कभी ये जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड होता है और वो वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस टू हैव, राइट? लाइक बीइंग ग्रेटिट्यूड एंड बीइंग फुलफिल्ड एंड अकम्प्लिश्ड होना और यू नो एंजॉय करना, लेकिन कभी कभी उसमें थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा यू नो देखे तो यू नो कुछ ना कुछ छुपा होता है जरूर मोटे, राइट? देखा तुमने वाला लाइक एक होता है कि देखा तुमने मैंने पोस्ट किया और बताया ये, और ये कुछ ना कुछ चलता रहता है राइट दिमाग में. ये ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट? हम सबको कभी कभी रिकग्निशन चाहिए होती है और होनी भी चाहिए, राइट? बिकॉज यू आर डूइंग गुड, यू वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज, दैट इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. इसलिए ट्रिक ये है कि अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करें, राइट? और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के सामने परफॉर्मेंस मत बना दीजिए, बिकॉज once you start performing for others, then इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए एक आधे गाने सुनिए, फिर then we'll be coming back और बात करेंगे status symbol की, बिना status symbol बताए. चलिए enjoy the song, we'll be right back.

क्या बात है। तो आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद बैन और ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो चलिए अभी एक लास्ट चीज़ पे आते हैं कि भाई स्टेटस बिना स्टेटस बताना, राइट, बोले बिना के, राइट, यू नो हम कभी नहीं कहते कि मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल, मुझे लोग सक्सेसफुल समझें, राइट, बट हम कहते हैं कि बस अच्छा होना चाहिए, राइट, अच्छा दिखना चाहिए, राइट, हम ये कहते हैं, राइट, वी सब्स्टिट्यूट द वर्ड ऑल द टाइम। लेकिन हम सब जानते हैं, राइट, कि कार मैटर करती है, नेबरहुड मैटर करता है, स्कूल मैटर करती है, टाइटल मैटर करता है, वेकेशन मैटर करता है, रेस्टोरेंट मैटर करता है, कभी कभी तो ये भी मैटर करता है कि भाई हम किस इवेंट में किसके साथ बैठे हैं, हम इतना भी सोचते हैं, राइट, हम इंसान को नहीं देखते कई बार, यू नो हम उनके कपड़े देखते हैं कि यू नो समटाइम्स यू नो वी टॉक अबाउट समबडीज क्लोथ्स रादर देन वो क्या कर रहा है इंसान, वो नहीं देखते, राइट, एंड दैट्स हाउ पीपल जज, राइट, दैट्स हाउ द सोसाइटी इज। तो हमें स्टेटस के लिए एक पूरा वोकैबुलरी यू नो नवा बना दिया है, राइट, स्टेटस वर्ड बोले यूज किए बगैर हमने ये सब चेंज कर दिया है, अच्छा एरिया, अच्छा स्कूल, अच्छा फैमिली, अच्छी कंपनी, अच्छे कनेक्शन, अच्छे लाइफ स्टाइल, राइट, बट ऑल वो अच्छा क्या है, राइट, दिस ऑल अबाउट स्टेटस, राइट, दैट यू आर इंडायरेक्टली गेटिंग ड्रैग्ड इन टू दिस नोशन समवेयर और द अदर, और वो जान के नहीं है दिट इज द ह्यूमन बिहेवियर, राइट, और दोबारा लाइक यू नो मैं इस सोच को लाइक यू नो ऑटोमेटिकली कुछ खराब नहीं पाता है, राइट, इंटरेस्टिंगली सवाल ये है कि हेल्दी डिजायर ऑफ सक्सेस कब वैलिडेशन की नीड बन जाती है, राइट, ये दो अलग चीज़ हैं, दैट्स वेयर यू आर काइंड ऑफ यू नो मूविंग योर सेल्फ आउट फ्रॉम व्हाट द मोटिव इज, कि लाइक अच्छी चीज़ों की डिज़ायर के पीछे अगर आप वैलिडेशन ढूंढना शुरू कर दें वहाँ पे प्रॉब्लम आपके शुरू हो जाती है। तो स्टेटस इज देयर, एवरीबडी वॉन्ट्स इट, एवरीबडी नीड्स इट, बट अगेन यू नो इसीलिए जब मैंने शो शुरू किया था तो कहा था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ऑलमोस्ट 9 से 10 चीज़ें बता दी जिसमें सभी में सभी को कहीं ना कहीं पे फ़र्क पड़ता है। तो चलिए गाने सुनिए, आई विल बी राइट बैक फॉर द क्लोजिंग, एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, आई होप यू आर एंजॉइंग द शो,

क्या बात है। तो बप्पी दा ऑल टाइम फेवरेट एंड आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन, वी ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड ऑफ द शो। तो चलिए आज हमने बात की कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मगर असल में क्या मैटर करता है और हमें क्यों फ़र्क पड़ता है, उस पर बात करते हैं। राइट, वी आर कमिंग टू द क्लोजिंग ऑफ द शो। तो पहले 2 घंटे हमने बात की कि भाई ऑनेस्टली हंसते खेलते हमने अपनी खुद का मजाक उड़ाया और सोचा कि और कहीं बिना कहीं इन सब बातों में वी माइट हैव बीन इन्वॉल्व। राइट, इतनी चीज़ें जो मैंने बताई कहीं ना कहीं पे तो आप फंसे होंगे। राइट, और वो नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है। ऑनेस्टली बताऊँ तो हमें फ़र्क पड़ता है, हम सोचते हैं। राइट, क्योंकि हमारा कल्चर डायस्पोरा ऐसा है, हम कंपेयर करते हैं, हम कम्पीट करते हैं, हम लाइक्स चेक करते हैं, हम बच्चों के सक्सेस को देखते हैं, उससे भी कंपेयर करते हैं, हम चाहते हैं कि खूबसूरत घर हो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, और ये सब ठीक है। राइट, बिकॉज वी आर एट द एंड ह्यूमंस। राइट, अगर ये सब डिज़ायर ही नहीं होगी तो फिर इंसान सवेरे उठ के काम क्यों करेगा? बोलेगा यार कुछ है ही नहीं तो जाने दो, बस काम पे जाओ, पेचेक लाओ घर पे और टीवी देख के सो जाओ। राइट, लेकिन शायद असली चर्चा ये होनी चाहिए कि असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम इन चीज़ों से अब कंट्रोल हो रहे हैं। राइट, ये चीज़ें कहीं हमें कंट्रोल तो नहीं कर रही। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू टॉक अबाउट। राइट, आप खूबसूरत घर इन्जॉय कर सकते हैं बिना नेबरहुड को इम्प्रेस किए, बिना नेबर्स को इम्प्रेस किए। राइट, करने की ज़रूरत आपको नहीं है। राइट, आप बच्चे की अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं बिना उसकी और बच्चे की डिमांड किए हुए। राइट, दैट यू कुड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप एक ब्यूटीफुल फैमिली फ़ोटो को भी शेयर सकते हैं, कर सकते हैं बिना लाइक्स की टेंशन लिए। राइट, आप नवी गाड़ी ले सकते हैं, उसकी फ़ोटो डाल सकते हैं, बट डू यू रियली लाइक द कार और यू जस्ट बाइंग इट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ? दैट इज़ द रियल थिंग, को उस चीज़ को सोचने के बारे में जो ज़रूरत है। राइट, और शायद यही है। राइट, ये देसी अमेरिकन जनरेशन का अलग स्टेप। राइट, कि हमारे पेरेंट्स ने पूछा था कि हम बेटर जिंदगी कैसे बनाएंगे। शायद शायद जनरेशन का सवाल, न्यू जनरेशन का सवाल ये है कि जो जिंदगी हमारे पास है उसको हम एंजॉय कैसे करें। इट्स नॉट अबाउट कि हम शो ऑफ कैसे करें। राइट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो क्योंकि कभी कभी हमें इतना टाइम के चक्कर में, उन चीज़ों के चक्कर में हम फंसे हुए हैं कि हम एक प्रूवन गिल्ट सोसाइटी के अंदर फंस चुके हैं। लाइक वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्रूव आवर सेल्फ टू दी अदर्स, और हम भूल जाते हैं कि लाइक भाई इतना सब कुछ है हमारे पास, उसको एंजॉय तो करो पहले। राइट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एंजॉय द मोमेंट्स, फील इट, एंड उन चीज़ों को आप खुद यूज़ कीजिए रादर देन उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज रात को इफ़ यू सिटिंग विद द फैमिली, आप ये पूछिए, ये देखिए कि लाइक भाई आप खुश हैं कि नहीं। राइट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप खुद को ये पूछिए कि लाइक लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए आपकी फैमिली, आप, हम खुश हैं कि नहीं, क्योंकि जो लोग बाहर से आपकी ज़िंदगी देख रहे हैं उनको पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। राइट, अगर अब आप उनके लिए ज़िंदगी जी रहे हैं तो देन देर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग। दिस इज़ व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक ऑनेस्टली। राइट, कि लोगों की टेंशन लेना बंद कीजिए, सोसाइटी की टेंशन लेना बंद कीजिए। यहाँ पे रियली नो वन केयर्स व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर अर्निंग एंड व्हाट यू हैव एट योर हाउस। नोबडी कम्स एंड पेज योर बिल्स। आप अपनी ज़िंदगी जीजिए, वो दुनिया की दारी के स्ट्रेस में मत जिए। राइट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हंग अप इन द रैट रेस ऑफ शो ऑफ। उसके 4 टाउनहाउस तो मेरे पास 5वां रेंट पे होना चाहिए। नथिंग इज़ गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। और इन्हीं स्ट्रेस के अंदर कहीं ना कहीं पे GoFundMe आ जाता है कि भाई साहब ही वॉज इन स्ट्रेस, टेंशन, बीमारियाँ लग गई, ये सब हो गया, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग बैड न्यूज़ कम्स आउट। सो डोंट स्ट्रेस, एन्जॉय योर लाइफ। वंस अगेन बिफोर आई क्लोज, टुमारो इज़ अ भूमि पूजन देयर फॉर राधा कृष्ण टेम्पल। प्लीज़ गो एन्जॉय एंड बी पार्ट ऑफ दैट ओकेजन। एंड देयर इज़ ऑल्सो गाला डिनर कमिंग नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से नवरात्रि भी शुरू हो रही है फ्रॉम RTP एंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो स्टार्टिंग एट HSNC टेम्पल एज वेल। सो इफ़ यू आर गरबा लवर्स, बाय योर टिकट्स, बिकॉज बाद में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड दे हैव लिमिटेड capacities for these places, so once they are full it'll be hard for you to get in. Gaane wane suniye, khush rahiye aur maze lijiye. Mausam change ho raha hai, I love the fall weather, so enjoy the beautiful weather and stay safe, aur hum milenge again next week.

From Ranveer Singh, Deepika Padukone to Alia Bhatt, Ranbir Kapoor. Six Bollywood love stories have leapt from screen to real life, proving that sometimes movie magic translates into true romance. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Nara. And you know what? When co-star turned soulmates, it's amazing. Let's know some Bollywood love stories born on set. Saif Ali Khan and Kareena Kapoor Khan, inki pyar ki kahani ki shuruaat hui thi Tashan movie se. Ranveer Singh and Deepika Padukone, Goliyon ki Raas Leela, Ram Leela se. Alia Bhatt and Ranveer Kapoor fall in love in the film set of Brahmastra. Ritesh Deshmukh aur Janelia Deshmukh ki pyar ki kahani shuru hui unki film Tujhe Meri Kasam se. Aur Ajay Devgan काजोल की हलचल मूवी से, अली फजल और रजा चड्ढा की फुकरे मूवी से, और देखिए प्यार उन्हें किस मोड़ पर ले आया. दे ऑल आर हैविंग किड्स नाउ एंड दे आर सो हैप्पी. पूरा फैमिली बना लिया यार, और वी कुडन बी मोर हैप्पी फॉर देम, यू नो. वेल, ऐसी फिल्मी बातें आपसे बहुत सारी करने वाली हूँ मैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू एंजॉय ऑल द अपकमिंग सॉन्ग्स ओनली ऑन नायरा.

0: कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं यार जिन्हें लेकर हमें बड़ा रिग्रेट होता है कि काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने वो कर लिया होता। बट ये रिग्रेट ना हो इसीलिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए ना, जस्ट मेक श्योर टू ग्रैब इट। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। एंड यू नो व्हाट, रणदीप हुड्डा एडमिटेड ही लॉस्ट आउट ऑन फिल्म सेट्स ड्यू टू हिज एरोगेंस, रिवीलिंग ही हैड टर्न डाउन रंग दे बसंती। वो कहते हैं वो अगर मैं करता तो शायद अलग लीग में आ जाता, ही सेड। ही वाज ऑफर्ड द रोल ऑफ भगत सिंह एंड हैड इवन ऑडिशन सक्सेसफुली। रणदीप ने बताया राकेश ओम प्रकाश मेहरा वुड कम टू मी समटाइम्स ड्राइविंग ड्रंक एंड ही वुड आस्क मी कर ले पिक्चर कर ले। ही एडेड आरजीवी टोल्ड मी आई एम थिंकिंग ऑफ कास्टिंग यू इन द लीड रोल इन डीप एंड यू वॉन्ट टू गो स्टैंड बिहाइंड आमिर इन द पोस्टर। माई जाट अरोगेंस केम अप एंड आई सेड आई वोंट स्टैंड बिहाइंड आमिर। ही ऑल्सो टर्न डाउन रॉक ऑन फॉर सिमिलर रीजन। In hindsight, Randeep felt his choice to work outside the industry mainstream slowed his growth and he once believed craft alone was enough for success. But eventually, yara, hota wahi hai jo kismat mein hota hai. Agar aapki kismat mein wo cheeze hain, then aap mana kijiye ya aap usse bhaag jaiye, aapko wo karna hi padta hai. Agar wo nahi hai, to fir aap kitna bhi effort le lo, it will never be yours. Well, stay tuned for more. I'll be back.
1: Radio Nayara par bajega sirf best hits.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हम कुछ भी कर ले हमसे बहुत प्यार करते हैं ना. अब देख लीजिए शर्मिला टैगोर जी इज अनइम्प्रेस्ड बाय इब्राहिम अली खान्स डेब्यू फिल्म नादानिया. वो कहती हैं कि वो हैंडसम लग रहा है पर फिल्म अच्छी नहीं है. एंड आई एम लाइक अरे यार ये होता है प्यार अपने ग्रैंड पेरेंट्स का. Well, this is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira, and you know what, during an interaction with AnandaBazaarPatrika.com on YouTube, Sharmila spoke about her grandchildren, Sara Ali Khan and Ibrahim Ali Khan, paving their way in the world of cinema. She said, Sara and Ibrahim are doing a wonderful job. Ibrahim's film was not good, but he still looks very handsome. He has tried his best. These things shouldn't really be said in front of everyone, but honestly, the picture isn't great. Ultimately, the picture has to be good. Sharmila went on to praise Sara for her dedication and potential. Saying Sara is a good actress. She works very hard and is capable of doing a lot more. She'll also achieve all. सच में ही नीड टू वर्क अ लॉट इन द फिल्म. यार मैं क्रिटिक नहीं हूँ बट अकॉर्डिंग टू अ जनरल ऑडियंस मैं ये बात कह सकती हूँ दैट नादानिया का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था. इट वॉज लाइक जेंजी बेस्ड मूवी. दिस काइंड ऑफ मूवी पीपल नाउ इट इज लाइक टू वॉच. लेकिन इब्राहिम उसमें फेल हो गए हैं परफॉर्म करने के लिए एंड खुशी वॉज डूइंग क्वाइट ओकेश. बट खुशी के कंपैरिजन में भी अगर हम देखें तो इब्राहिम वॉज वे बैक. यू नो ही नीड्स टू गियर अप बट इट्स ओके. इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म एंड वी हैव टू गिव हिम चांस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट हिज ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. यू नो दिस इज वी शुड बी डूइंग. दिस इज द आइडियल थिंग. वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.

0: barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिख तगाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: let's know some movies that Deepika Padukone rejected that went on to become fan favorites and widely popular. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you will be so shocked to know that Deepika turned down these 7 popular films. Pehle to Rockstar, usme jo Nargis ne role nibhaya hai, wo Ranveer Singh ki girlfriend hone ka, wo role shayad Deepika nibhati, lekin she let it down. And jab tak Hijaam Hai Katrina ka role Deepika ne mana kar diya, this is a shocker, Gangubai Kathiyawadi. आलिया भट्ट ने जो नेल किया था वो रोल को दीपिका ने मना किया, और सुल्तान में भी अनुष्का शर्मा का रोल जो है वो दीपिका निभाती लेकिन शी लेट इट डाउन. रॉय फिल्म में जैकलीन के रोल के लिए भी दीपिका ने मना किया, और प्रेम रतन धन पायो में भी दीपिका ने सोनम कपूर के रोल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. एंड देन धूम 3 में कटरीना कैफ की जगह आज हम दीपिका पादुकोण को देखते अगर उन्होंने हाँ किया होता, बट शी सेड नो, मे बी ड्यू टू डेट्स एंड ऑल. लेकिन कितनी पॉपुलर मूवीज है जो सबके सभी हिट हुई एंड वी लव द रोल ऑफ फीमेल कास्ट. पर होता है ना डेस्टिनी, जिसके जब दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वही बात है. चलिए फिलहाल सुनिए आप आने वाले को.
1: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा, ओनली ऑन रेडियो नायरा.
2: When was the last time your apartment community had a full-size climbing wall, retro arcade games, and a sports

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

यार यूं ही नहीं कहते कि एंजॉय एवरी मोमेंट, क्योंकि क्या पता आपको कुछ टाइम बाद रिग्रेट होने लग जाए कि शायद मैं इसे और ज्यादा एंजॉय कर सकता था, शायद मैं ये कर लेता, शायद मैं वो कर लेता। तो इसीलिए एंजॉय एवरी मोमेंट, यू नो। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। एंड यस, आपको पता है अमिताभ बच्चन सेज ही रिग्रेट्स नॉट बीइंग देयर फॉर अभिषेक एंड श्वेता ड्यूरिंग देयर अर्ली इयर्स। ऑन कौन बनेगा करोड़पति वाइल इंटरैक्टिंग विद अ कॉन्टेस्टेंट ही ओपन्ड अप एंड सेड, आवर एनवायरमेंट वॉज वेरी सिंपल, जया वुड टेक केयर ऑफ द किड्स, आई वुड गो टू वर्क, बट देयर इज वन थिंग दैट आई रियली रिग्रेट एंड दैट इज आई कुडंट स्पेंड टाइम विद माई किड्स वेन दे वर लिटल। आई यूज टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वन आई वुड लीव इन द मॉर्निंग फॉर वर्क दे वुड बी स्लीपिंग एंड when I used to come back they would be sleeping, I had to care of them completely। fathers ke sath mein mostly ye baat ho jati hai, aur mujhe bhi mere papa hamesha matlab bahut kam समय दे पाए, बिकॉज ही इज़ अ पुलिसमैन एंड ही यूज़ टू वर्क अ लॉट, यू नो, बहुत शिफ्ट्स होते थे, बहुत सारी रात में भी शिफ्ट होना, काम पे जाना। तो जब भी वो आते थे हम नहीं, पहले तो ट्रांसफ़र हुआ था उनका, हम अलग जगह में रहते थे, मेरे पापा बस्तर में रहते थे एंड आई यूज़ टू लिव इन सम डिफरेंट प्लेस। तो ये बड़ी अलग सी चीज़ें साथ में हो जाती है फादर्स के, लेकिन जब भी मौका मिले मेकअप टू इट ना, आप अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, फादर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, बैलेंस आउट, यू नो। Stay tuned for more.

break silence on playing Lord Ram in much awaited Ramayan. Ranveer Kapoor, set to star as Lord Ram in Nitish Tiwari's Ramayan, recently shared his excitement at the Red Sea International Film Festival in Jeddah. Calling it a dream role, he revealed that the film, made in two parts, explores themes of culture, family and the triumph of good over evil. Ranveer has completed shooting for the first part and will begin the second soon, expressing gratitude for the being part of the greatest story ever. I think he's totally blessed and God has बिल्कुल उनको मतलब इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया है कि उनके रोल को निभाने का मौका रणबीर को मिल रहा है. एंड आई थिंक यू शुड डू द बेस्ट, यू नो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसी चीज है ये. एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी यार. आई थिंक एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर दैट फिल्म टू रिलीज सून. बट या अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि ये मूवी कब रिलीज हो रही है. इट इज गोइंग टू बी रिलीज ऑन द नेक्स्ट दिवाली एंड द नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिवाली. दो पार्ट में अलग अलग ऐसे रिलीज किया जाएगा. एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट दे हैव चोजन टू रिलीज द फिल्म. It's already so auspicious. Diwali ka waqt hoga. Yeah, it will be total blessing. In this note, I'm signing off from the show. Agli baar aapse milu. Till then, take care of your lovely self. Mere baat suniye. Bahut zaryada.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: लाओगे

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूँ सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आज पराग. 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश. वेल, कैसे चल रही थी एंड कैसे चल रही है आज की आपकी शाम? आज की आपकी शाम तो काफ़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है. और कल क्या किया? सत्संग गए, पाव भाजी खाया. क्या क्या किया? कल था 2 अक्टूबर, विजय सालगांवकर की दृश्यम द कंक्लूजन भी जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं. बात करेंगे उसके बारे में भी. फिलहाल इस खूबसूरत शाम का ये पहला गाना प्ले करने जा रहा हूँ बस आपके लिए. अरे एक बात पूछना तो मैं आपसे भूल ही गया, कैसे हो आप? खुश तो हो ना? खुश रहिए क्योंकि अच्छा होता है. सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

एंजॉय किया आपने, गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है कि मैं कुछ लोकल खबरें आपके साथ शेयर करूं। तो पहली खबर जो है वो काफी खुश कर देने वाली है। हमारे प्यारे शहर धरम और रैली ने पूरे अमेरिका में एक बार फिर हमारा नाम जो है वो चमकाया है। एक नई नेशनल रिपोर्ट के मुताबिक नया बिजनेस या नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए पूरे देश के टॉप 10 शहरों में हमारे 2 शहरों को चुना गया है। एंड इस लिस्ट में धरम जो है वो 6th और रैली जो है वो 7th नंबर पर आया है। वो लाइक कहते हैं ना कि यार जो रैली धरम में रहता है वो कहीं और रह नहीं सकता, इसी प्रकार की ये चीज़ है। और एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए रैली एंड धरम के लिए। बहुत ही खुशखबर के साथ आज की शाम की शुरुआत हुई है। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूँ सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आज पराग. 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश. वेल, कैसे चल रही थी एंड कैसे चल रही है आज की आपकी शाम तो काफ़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है. और कल क्या किया? सत्संग गए, पाव भाजी खाया. क्या क्या किया? कल था 2 अक्टूबर, विजय सालगांवकर की दृश्यम द कंक्लूजन भी जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं. बात करेंगे उसके बारे में भी. फिलहाल इस खूबसूरत शाम का ये पहला गाना प्ले करने जा रहा हूँ बस आपके लिए. अरे एक बात पूछना तो मैं आपसे भूल ही गया, कैसे हो आप? खुश तो हो ना? खुश रहिए क्योंकि अच्छा होता है. सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

मेला दिलों का आता है मेला दिलों का आता है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आज का इवेंट है उसका मेला तो ज़रूर लगा है। और आज सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, आज डिस्क पार्क में बहुत ही प्यारा फॉलिंग फॉर लोकल चल रहा है। यहाँ 180 से ज़्यादा लोकल बिजनेस के अनोखे प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए मज़ेदार